तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

सिफत सलाह करने वाला, कीर्ति करने वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी का नाम दिता है। इतिहास विच पुराने ग्रंथां विच जिक्र आउंदा है कि भगवान की उस्तत करने वाला जो हर वेले अपने हत्थां दे विच वीणा लेके रखदा सी, जिसका नाम नारद करके आया है, हर वेले प्रभु की उस्तत करदा सी, कीर्तन करदा सी परमात्मा। एक वे नारद भगवान ने प्रभु कोल एक सवाल किया, है भगवान जे तेरे दर्शन करने हो तां दस किथे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु का मिलाप पावे कोई आखे के हथा दियां हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दें, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दें, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे उसके। ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होण तां किथे दर्शन करा, तां कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा, ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने होण ना मैं किसे दक्षण विच वसदा हाँ, ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ, ना किसे मस्जिद विच, ना किसे गुरुद्वारे विच, ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है, जे मैनू लभना होवे तां मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन, उन्हां दियां जिथे जुतियां पईयां होवन, उन्हां दी जुतियां दी थां दे उत्ते उन्हां दी चरण धूड़ दे विच मेरा स्थान। भगवान अपने भगतां दे वस है, उन्हां दी संगत भगत जेड़े हन भावें जिथे मर्जी उस नूं प्रगट कर लैण, भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों वी प्रगट कर लैण, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए, ए भगतां दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहगुरु दे। परमात्मा ने कहा है, ऐ नारद मेरा घर मेरा स्थान साध संगत दे विचकार है, उस तो सिवा मेरा कोई स्थान नहीं। जेड़े उस्तत करदे हन, सिफत सलाह करदे हन, इक मन होके जपदे हन, कीर्ति दे विच जुड़े हुए हन, निष्कपट होके, निर्छल होके, निस्वार्थ होके जेड़े कीर्ति करदे हन प्रभु दी, उन्हां नूं मैं प्रतख अंतस्करण रूप विच अंतर आत्मिक दर्शन दिंदा हां, उत्थे मेरे दर्शन हुंदे हन। और भगत नारद इतना प्रभु का निकटवर्ती सी, प्रभु की प्रसन्नता से उस भगत नारद उत्ते, क्योंकि वह कीर्ति करने वाला सी। तो गुरु महाराज ने गुरबाणी दे विच कीर्ति करने वाले, कीर्तन करने वाले, सिफत सलाह करने वाले ढाडी का नाम दिता है।

की परियोजना लेके आया है। अगों गुरु पातशाह जी ने एक सवाल किया, एक मंग की थी।

क्योंकि मोदी खाने का हिसाब तेरा तेरा करके लुटा दिता। जदों हिसाब मंगिया गया होगा उस वेले बहुत सारा घाटा जिस वेले नजर पिया होगा तो गुरु नानक वेई नदी विच डुब के मर गया। ऐसी ना समझ लोगों के ख्याल जिन्होंने कदे गुरु नानक नूं पछाणिया तक नहीं, लेकिन जिन्होंने पछाणिया जिन्होंने गुरु नानक नूं जाता। बेबे नानकी कहंदी है मेरा गुरु नानक जिहड़ा डुब्या नूं तारनहार है वह आप किवें डुब सकता है, उहदा इको ही कौतक है। और सचमुच जदों तीसरे दिन फिर गुरु नानक प्रगट होए और उस वेले संसार दे सामने एक ऐसा पैगाम लेके आए

जो गुरु नानक नु सब तो पहला मिलया सी। जिस वेले पहुंचे सन गुरु नानक और प्रार्थना की अपने निस्वरूप अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणा विच, भाई गुरदास जी अपनी पवित्र बाणी विच कहंदे हन।

साडे कोल पानी है, ए पानी मंग रहे, ताई ये मन विच आया ए ता पूजा दा पानी है, ठाकुर नू इशनान कराउन दा पानी है, जे इस नू पिला दिता ता झूठा हो जाएगा। सात संगत बोलो श्री आख्या तू भाई कुछ देर ठहर, असी ठाकुर नू इशनान करा आईये, फिर आके तेनू पानी पिलाऊं दे। ओ गुरु का सिख कहन लगा, एक पासे ता ठाकुर नाल एडा प्यार करना, ते दूसरे पासे उदे बनाए हुए बंदियां नू पानी तक ना देना। ओ लंघ गए अगे, पानी ना पिलाया ता सिख ने जौंदियां ए मुंह चो बचन आखे, एक पासे रब नाल एडा प्यार ठाकुर नू इशनान कराउना, दूसरे पासे कुट पानी दा ना पिलाउना, जाओ तानू ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। सात संगत बोलो श्री, जाओ तानू ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। वापस आए, ठाकुर नू इशनान कराया, पूजा विच जुड़े, वीणा चुक के कीर्तन आरंभ करन लगे, लेकिन आज पूजा विच मन नहीं लगता, बार बार आवाज आउंदी है, जाओ तानू ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। ओ सिख याद आया, पानी लैके जदों उस थां ते पहुंचे, भीड़ लगी हुई, ओ जिहड़ा सिख सी तद तक ओ प्राण त्याग चुका सी। सात संगत बोलो श्री, प्राण छड गया, सारे खड़ोते यही कह रहे सन, ए धन गुरु गोबिंद सिंह दा सिख सी, जिसने डोला लुटन तो बचाया, ते दूजियां दी खातर अपनी जान दे दित्ती, ते आ बिचारा कुट पानी दा मंगदा चला गया, किसे ने पानी मुंह विच ना पाया। ता इना दोनों दे कन्ना विच आवाज पई, जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। ता फिर इना ने अरदास कीती कि हुण असी की करिए, साडे कोल धन है, इहदे नाम दियां बाउलियां ला देने हां, खूह बना देंदे हां। खूह लाए, बाउलियां पुटाईयां, लेकिन अजे भी यही आवाज कन्ना विच गूंजदी है सिख दी, के जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। सात संगत बोलो श्री, तां किसे ने आके स्रोत पाई सोइना मोइना नू, के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह इस पिंड विच आ रहे हन, ते तुसी उना दे चरना ते टह के अपनियां भुलां बख्शा लो। आ गए पिंड दे दरवाजे बूहे ते खड़ो गए, आके राह ते उपर सोइना ते मोइना, जिथों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने लंघना है, सवेरे ही आके खड़ो गए, नाले खड़ोते हन, नाले ए तुकां पढ़दे हन, की आओ सी भी पढ़िए।

तेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गुरु अंग

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इथों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावन।

गुरु पातशाह इतो हुण पिट हो रही है, माफी दे दे। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

सच्चे पातशाह चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना आ फल लगता है टैणी नू और टैणी उतनी चुकती चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सत्संग।

अपने सतगुर के बनहारे, अपने सतगुर के बनहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे।

परमेश्वर का नाम सारिया नू विसर गया सी। पाप विच रुझिया होया संसार जदों अपने बढ़ाए हुए संसार की ए हालत वेखी निरंकार ने कि मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वेष की अग विच जल रही है ता निरंकार ने गुरु नानक का रूप बनाया

13 तक गुरु नानक ने गिणिया ते जदों 13 आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया ओदी चोली भरी गई ते कहंदे गए 13 13 13 सार संगत बोलो श्री 13 ही 13 करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के

मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखा दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते दे जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते

सच नानक उसी भी सच हे निरंकार तू आदि विच भी सच है जुगाद विच भी सच है हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इथे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेई नदी विचों बार ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए बाला भजिया

इतनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। सिपाही जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा, नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गई। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, परोसे वाली सी, कहन लगी इवें ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, वो कदे डूब नहीं सकदा। ताईं सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई, बेबे करतार चित आवे। उठी बजी बेबे नानकी, मेरा वीर आ गया। जां बुआ खोलिया,

ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वाल करके पंडित जल दे रहा सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वाल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सत संगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पवोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। सत सिखत बोलो श्री बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरा वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई, आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना, ए सारिया सिफरा हन, सिफरा ए सारे जीरो हन, और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा, एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा, दो जीरो पावेगा सौ, तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने

और एक होर गल, तुसा देखिया घरां विच ते बाहर कुछ जानवर ऐसे भी हुंदे ने जेड़े अपना आप छुपाउंदे ने, जिन्हां दे डंग विच जहर हुंदी वो अपने आप नूं लुका के रखदे ने, क्योंकि उन्हां नूं पता है साडी जहर दे कारण करके संसार साडा दुश्मन है। असी डंग मारन वाले इस करके अगले डंग चुकी फिरदे ने साडे खिलाफ। सप नूं भी पता है, पिछू नूं भी पता है, इन्हां नूं पता है कि साडे खिलाफ डंग चुकी होई है जिन्हां नूं साडे कोलों खतरा है, ते फिर ये अख बचाउंदे ने, ध्यान देना। सप ते निगाह पै जावे एक कतराएगा, अगा पिछा होण दा जतन करेगा, पिछू हनेरे विच तां अपना दा लाउण दा जतन करेगा, लेकिन जे चानण कर दिओ ते भज के खूंजे च वड़न दी कोशिश करेगा। उहनूं पता है कि मेरे बारे जानदे ने मैनूं मारदे ने। बिल्कुल इसे तरह डंग मारन वाले जानवरां वांग जिहड़े दोष ने ना बुराइयां, ये भी मनुख नूं अग्ञान दे हनेरे विच डंगदियां ने। जे किते बंदा अपने आप ते निगाह मारनी शुरू कर दे, अपने आप नूं देखण दा जतन करे ना कि मैं की हां, मेरे अंदर काम कितना है, क्रोध कितना है, मेरे अंदर हंकार कितना है, मेरे अंदर निंदा कितनी है, ईरखा कितनी है, इन्हां नूं भजना पै जाणगी, इन्हां दोषां नूं घबराहट पैदा हो जाएगी कि तां बंदा जिस नूं असां डंगणा है तां वेख रहा सन, ये डंग नहीं मारन देवेगा, ये जहर नहीं घोलन देवेगा, ये सुचेत हो गया, फिर ये जीवन विचों लठ जांदे ने, सिर्फ निगाह रखण दी लोड़ है। भाई साहब भाई गुरदास जी, क्योंकि आप पूर्ण गुरसिख, गुरु के सामने अपने दोष रख देण वाले, गुरमत लैण वाले, दुरमत तजन वाले ने, वो अपने आप ते निगाह रखते ने, ते सानू अपने आप ते निगाह रखण वास्ते एक बड़ा प्यारा जिहा ढंग दसदे ने। वो कंजरे किरत घर नहीं बनना, गुनाहगार नहीं बनना, ते निगाह मारिए ते कुछ अंदर पिया नजर आ जाएगा। कहने हो अपराधी, गुनाहगार अपराधी, कहने जिसने अपराध कर लिया हो, वे दोष कर लिया हो, जिदे कोलो गुनाह हो गया हो, वो कहने एक मुलजम हुंदा है ते एक मुजरम हुंदा है। मुलजम हुंदा जिते इल्जाम दोष धरिया गया होवे कि इसने हो सकदा है गुनाह कीता, लेकिन जिसले साबित हो जावे इन्हें गुनाह कीता है, फिर कहने ने मुलजम नहीं मुजरम है, इहदे कोलो जुर्म होया है, पक्की गल। मुलजम तो मुजरम हो जाता है, ते जेड़ा बंदा मन ही लवे ना, कन्फेस कर लवे, वह कहता जी मैं मुजरम हां, वह यह नहीं कहता मैं मुलजम हां। मुलजम तो उहदा जिहदे ते इल्जाम लाया जाए, मुजरम हुंदा जिहड़ा मन लवे या जिहदा साबित हो जाए। भाई साहब कहते ने मुजरम बन के गुरु के चरणा विच कटहरे च खड़े हो जाओ, मन लई हो अपराधी गुनाहगार हो, बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो। कई बार ऐसा भी होया होगा, गुनाह मैं कीते नहीं, या मैं तो होए नहीं, या मौका नहीं मिले, कई तरह के गुनाहगार ने। एक वो होंदे ने जेड़े कर लेंदे ने फड़े नहीं जांदे, एक वो होंदे ने जेड़े करदे ने फड़े जांदे ने सजा मिल जांदी, एक वो भी होंदे ने माफ करना जेड़े करना चाहुंदे ने दा नहीं लगा। अंदर गुनाह पल रहे है, अंदर गुनाह की बिरती चल रही, घट गुनाहगार हो भी कोई नहीं, दा नहीं लगा लेकिन करना चाहुंदा है, तिने ही गुनाहगार। भाई साहब कहते ने हो अपराधी गुनाहगार हो, बेमुख मंदा चोर यार जुआर हो। जुआ एक खेड़दा है पिया, फड़िया गया, एक खेड़दा है पिया नहीं फड़िया गया, एक ओ जिहड़ा खेड़न नूं जी करदा डरदा नहीं पिया खेड़दा, उत्थे दा उत्थे ही खड़ा, कोई वखरा नहीं खड़ा उन्हां दा। एक शराब पी रहा है डिग रहा है, एक शराब पी के मुंह च खुशबू घोल लैंदा है पता नहीं लगन देंदा, आके छेती नाल सौ जांदा है नहीं पता लगा। एक ओ है जिदा शराब पीन नूं जी करदा है ते डाक्टर ने रोक रखिया है, या करदिया तो डरदा नहीं पीता, इको ही थां ते खड़े, तिने ही गुनाहगार। भाई साहब कहंदे ने जे अंदर चोरी है कर लईए, फड़े गए नहीं कीती, करन नूं जी करदा है तां भी चोर है, ते कदे कदे अपने आप ते निगाह एवें मारनी चाहीदी है, करन नूं जी करदा है, गुनाह करन दी बिरती अंदर खड़ी है कि गुनाह करके फड़े नहीं गए, कोई कसर होवेगी, गुनाहगार साबित नहीं होए, या गुनाहगार साबित हो गए फिर भी ठीक हां। चोर यार जुआर हो, पर घर जो हंदा लोगां दे घरां वल मेरी निगाह, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा। ते भाई साहब नूं इह सारे औगण जिहड़े ने चंगे नहीं लगदे, भाई साहब कहिंदे ने औगण कढ़न दी लोड़ है। गुरु के प्यार वालियां दे नाल रल के सिमरन करके

हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित कर हर कंत ना प्रगटे पाठ नगर से ग्राम। सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम। हर मेलो स्वामी।

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो

लख सिगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत, पकड़ चलायन।

अरबहलोक सियाने, तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारित बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी, मुन इंद्र महा शिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा,

0: You're listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: माता जी दा कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया, कंध मुकम्मल तैयार हो गई, साहिबजादे असहे ते अकह कष्ट सहार दे होए शहीदी पा गए, धरती कंब उठी, आसमान डोल गया।

पातशाह तो सवाल कीते, पातशाह तुसी अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उथे रब दी कथा है, इथे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं कीती। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया, कृष्ण नू भगवान बना बैठा। कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणा नू, तुहाडी महिमा नू वेख के कोई कह बैठे भई तू ते रब इको ही हो, तू ही रब है, ते फिर की होवेगा? हजूर ने बचन कीता,

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहते ने जो कुछ नजर आता मनुख की अंदर की रहनी जिस वे बहर आ जाती है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख की रहनी सुधार देंदे ने इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल बिवाया जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई। चाल ठीक हो गई और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तों बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं, और यही वजह है कि लोग तां कहंदे ने पग बननी है लेकिन गुरु का सिख कहंदा दस्तार सजाउणी है क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा, चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगदा ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवै, जबान तो उही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेंगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाए।

अकाल मूर्त अजूनी सहंगुर प्रसाद जप आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के अरवन जात हर पात हिंदेन रूप रंग हरी पी कुन सत्य है अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित तूज कहिं जय इंद्र इंद्राण शाहो शाहन गणिज फिर भवन में ही सुर नारा सुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समझ सतगुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे रूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सबना भी आवारी नानक दास संत पाछा करियु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरी है सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा